एलर्जी सेवा, बाफ सेवा, घाउ सफा, टाका, माइनर ओटी, बिरामी निरीक्षण कक्षे। सम्पर्क कावासोती सिटी क्लिनिक, कावासोती 2 कुमारवती रोड, नवलपुर। मोबाइल नम्बर 9847005608 र 9142073207।

0: रेडियो, डीवीडी, एलसीडी, एलईडी मॉनिटर, यूपीएस, इन्वर्टर, साउंड सिस्टम, फैन, होम थिएटर, इमरजेंसी लाइट, मोबाइल, टेलीफोन सेट, स्पेयर पार्ट्स पाइनुका साथै ग्यारेन्टी का साथ मरम्मत पनि गरिन्छ।
1: पुरुष स्पेयर पार्ट्स लगायत इलेक्ट्रोनिक्स का सबै प्रकार का सामानहरु होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिनुका साथै ग्यारेन्टी का साथ मरम्मत पनि गरिन्छ। सम्पर्क सहारा इलेक्ट्रोनिक्स, काबासती दुई बीपी चोकबाट हाट बजार जाने बाटो।
2: प्रोप्राइटर ईश्वर राज गुरौ, फोन 0785140012, मोबाइल 9870744697।
3: Havells, Low Wage, Sidon, Aisin, Tata Voltas, Idea Powertech, Nawal Parasi ko adhikarik bikreta, AC, Freeze, Washing Machine, Cooler Fan, Sound System, Wholesale tatha, Khudra Mulyama Paincha.

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.

0: कैसा है तू?
1: तू सेटल हो गया?
2: मॉम कहाँ है?
0: काम कैसा चल रहा है?
2: मॉम ठीक है या कुछ हुआ है?
0: मॉम ठीक है तेरी, घर पे है।
3: तो फोन क्यों किया?
0: फोन क्यों किया मतलब? ये पूछने के लिए तू ठीक है या नहीं?
2: नहीं भी होता तो क्या कर लेते आप?
4: बड़ा बदतमीज है तू, तेरा हाल पूछने के लिए फोन कर रहा हूँ और तू अपने बाप से टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं। ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? कृष्ण कृष्ण

0: Star Digital, entertaining the nation. 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न रोक्ने, नया कपाल उमार्ने, कपाल कालो बनाउने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल.
1: Bravo Bank, a reason for your success.
2: Passion, the lifetime tissue. Sandhai Sangai.

0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो चौतारी।